0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन

0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का

0: आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवे चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेभे 505 मीटारे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़।

छुरे छुरे राजे माधुरे छाये मालते माला दा कौन छे जोड़ा ये मालते माला।

0: एकटी पे गई एकटी पे गई से जे भूले जाए
1: मिस्टर
0: एमन बंधु आर के आछे तुमार मतो मिस्टर कखनो बा डार्लिंग कभू तुमी जननी।

छो छो छो छो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भाग ड्राइवर का साथ। अरे छो छो छो क्या शर्म की बात, भद्दर

छोकरा छुकरी लड़का लड़की पहन के बांधे दाना, कौन भागेगा किसी का साथ कुछ ना जाए जाना, हाय राम कुछ ना जाए जाना, प्रेम से गाना कुछ ना सीखना समझ धर्म और जा। भद्दर घर का लड़की भागे दे रही भार का साथ, अरे चोर चोर।